रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कॉन्टैक्ट

कॉन्टैक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस।
4: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1800-7178 1-800-1800-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप। दोस्तों व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनने के लिए 8899-04904 इज द नंबर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया की किसी भी कोने में। रेडियो चुनाव 90.4 FM, मैं हूं जग।

0: Lord Jesus.
1: Kon aaya?
2: Jesus.
3: हर दिल की धड़कन रेडियो चला 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप मैं हूं जॉक्सिस व्हाट्सएप शो और व्हाट्सएप शो में ढेरों किस्से कहानियां जो हम आप तक पहुंचाते हैं आप हमें बताते हैं जी हां अपनी बात रखने के लिए 88999 सुपर चोर्च नंबर शायद हमारे साथ जुड़े हैं लिखते हैं शायद भाई कहां थे एंड आई मिस्ड यू टू माय लव आई वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर थैंक यू सो मच इस प्यार के लिए और इस फ्रीक्वेंसी व्हाट्सएप शो में हिस्सा बनने के लिए डीएम भी कर सकते हैं आप डीएम करने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए इंस्टाग्राम पर मिलूंगा जॉक ज्यूस के नाम से देखिए जब भी कोई कुछ क्रिएटिव करता है उसका माइंडसेट क्रिएटिव रहता है और ये एक ऐसी चीज है जो आप बना नहीं सकते बल्कि आप में इनबिल्ट होती है अब कुछ लोग इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि भैया उनकी क्रिएटिविटी उनके लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए कारगर रहती है और ऐसा ही कुछ आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप शो में आज का टॉपिक क्रिएटिव माइंडसेट जिससे रिलेटेड होगी बात क्रिएटिव माइंडसेट्स कैसे बनते हैं कैसे जाना जाता है कि एक इंसान क्रिएटिव है या नहीं और क्रिएटिविटी की चरम सीमा क्या है आज बताएंगे आज के टॉपिक में अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं कुछ बताना चाहते हैं कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं 88999 0499 0499 0499 0494 नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है रेडियो 90.4 FM हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी मैं हूं जॉक्सी धड़काते रहो

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज

जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: Zeus. Kom nou.
1: मैं हूं जॉक ज्यूस, सब एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो का हिस्सा बनी है हुमैरा
2: ज्यूस।
1: लिखते हैं हुमैरा सर, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती जैसे कि आपने बनाया, लेकिन सोसाइटी क्रिएटिव आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करती। देखिए, क्रिएटिव होने के लिए जरूरी नहीं है कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करे, बट अगर आप अपनी क्रिएटिविटी एक पॉजिटिविटी के साथ पिच करते हैं तो जाहिर सी बात है जो क्रिएटिव लोग हैं वो आपकी क्रिएटिविटी को समझेंगे ही नहीं बल्कि सराहेंगे भी। सो इट्स लाइक कि अगर आप गलत जगह पर क्रिएटिविटी या टैलेंट दिखा रहे हैं तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। सो अपना प्लेटफॉर्म चुने, उसके बाद अपने क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करें या एज पर द रिक्वायरमेंट अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करें। थैंक यू सो मच हुमैरा हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, क्रिएटिविटी और क्रिएटिव माइंडसेट्स की अगर हम बात करें तो इट्स फ्रेमवर्क जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यूरियोसिटी, कंफर्ट और इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। वही अगर हम देखें तो इट्स नॉट अ स्किल, इट इज काइंड ऑफ समथिंग दैट इज इन बिल्ट इन यू, जो आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ करता है, आपके ब्रेन को और चीज़ें सीखने में कोशिश कर मदद करता है। और वही अगर हम देखें तो साथ ही साथ ट्रेन करता है ब्रेन को इस तरह कि आप आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए। बहुत सारे लोग क्रिएटिव तो होना चाहते हैं लेकिन स्ट्रेस उनके आड़े आता है, बिकॉज स्ट्रेस किल्स क्रिएटिविटी। और स्ट्रेस या हेवीली थिंकिंग के बाद अगर खुद को आप रिवॉर्ड करते हैं, एक ऐसा गोल चूज करते हैं जिसे आप क्रिएटिवली अचीव करके अपने आप को रिवॉर्ड दे पाए। फॉर एग्जांपल, आपको ऑफिस में एक असाइनमेंट मिला है जिसे आप क्रिएटिवली सॉल्व करते हैं या हेवीली सोच कर क्रिएटिव अंदाज में उसका सोल्यूशन देते हैं, देन योर रिवॉर्ड विल मेक योर ब्रेन रिलैक्स। और अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या सोचा, क्या जूत सोचा है, कहना चाहिए कुछ हुआ, बट डे ड्रीमिंग एंड जो आपका ब्रेन है, व्हेन यू लीव इट टू वेंडर एंड डे ड्रीम, इट हेल्प्स योर ब्रेन टू बी क्रिएटिव, इट रिस्टोर्स योर ब्रेन टू डे लाइक दैट डिफॉल्ट मोड। और उससे क्या होता है, नए कनेक्शंस, नए आइडियाज जनरेट होते हैं। रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी पर क्रिएटिव माइंडसेट्स आज का टॉपिक, आप बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें। 8899904904 इज द नंबर जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: आ रहे हैं यलगार घराने के दुबई से अमानत अली।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

दोस्तों रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में अगली पेशकश टेक टॉक्स एंड बॉलीवुड न्यूज, यहाँ टेक की वर्ल्ड से अपडेट्स और साथ ही साथ बॉलीवुड न्यूज का तड़का भी। रेडियो चनार 90.4 FM आप सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को तड़काते रहें।

0: ¿Cómo la veo?
1: Bollywood News. Bollywood News.
2: It's the radio channel 90.4 FM. Bollywood News. बॉलीवुड न्यूज में आइए बात करते हैं काजल अग्रवाल की। काजल अग्रवाल जो कि हिंदी और साउथ फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, न जाने क्यों अपने तीर चला रही है सलमान खान पर। वैसे जो सलमान खान की ग्रह दशा है थोड़ी बहुत तितर बितर लग रही है, क्योंकि एवरीबॉडी इज टेकिंग देयर चांस ऑन सलमान खान। शायद इस वजह से कि सलमान खान जो है कुछ चीज़ों में हाथ थोड़ा ढीले छोड़े हैं, नहीं तो भाईजान का नाम कौन ही लेगा। अब काजल ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भैया सलमान खान ने सबसे ज्यादा मुझे वेट कराया शूटिंग पर। आई वाज लाइक इतना वेट कौन कराता है, नाउ आई एम सिलेक्टिव अबाउट हिंदी फिल्म्स। अब उन्होंने साउथ इंडियन मूवीज की तारीफ करते हुए कहा है कि वहां पर मैंने देखा है डिसिप्लिन और साथ ही साथ देखा है वर्क कल्चर और प्रोफेशनलिज्म। लेकिन सलमान खान ये जब बात सुनेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे या करेंगे भी नहीं। अरे भाईजान आओ कैसे होकर ये भी बोल सकते हैं कि कौन है काजल अग्रवाल बे। अब क्या होता है रिएक्शन या होगा एक्शन, हम भी देखेंगे। अभी फिलहाल कुछ ट्रैक्स आपके लिए और इस फ्रीक्वेंसी पर आपका अपना भाईजान और जिस दुर्गाते रहो।

दोस्तों इसी ट्रैक के साथ इस माय टाइम टू साइन अप फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो चुनार। This is Jugs signing up for the day. RJ Diva आपसे जुड़ेगी कुछ ही देर में लेकर शो चुनार बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट। Till we meet again, keep your head high, walk tall and always remember that I love you all. Bye bye, tata, take care, kushbash, ma salama.

0: वो जो बाकी रह गया है हम में तुम में वो करार है, ये वो प्यार है, ये शो चुनार बीच से ये 90.4 रेडियो चुनार पर आगाज हो चुका है शो चुनार बीच का फुल ऑन वाइब एंड ट्राई बीट्स और अभी
1: Chinar Beats with Harshi Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Beats on repeat, show Chunar Beats, ab enjoy kar rahe hain only on Radio Chunar 90.4 FM. Dei sari baatein, masti mazak, fun, entertainment aur entertainment ke alawa dei sari information aap tak pahunchti hai. And well, I was super duper excited kyunki dei sari baatein aur aapka mera saath aur ye saath khas banta hai jab barishe bhi hai abhi, but thoda sa concern ye bhi hai ki aap dekh lijiye ki kis had tak barishein zoron se pad rahi hain. And concern ye hai ki flood wali situation na ho. Abhi aisa koi alarmic situation to nahi aaya hai, so abhi ye barishein continue rahenge kal tak. Aur we hope so ki weather mein kuch behtri aaye, kyunki aise concern badhta hai, log pareshan hote, but pareshan abhi hone ki koi bhi zarurat nahi hai. देखिए, पैनिक होने से फिर तो बस इंसान का दिल बेकरार होता है, और हम नहीं चाहते हैं कि आप परेशान रहे, आपकी हेल्थ पे कोई स्ट्रेस आए. और वही तो है कि हम आपका ख्याल करते हैं, वी केयर फॉर यू, वी मेन इट. और मैं तो ये चाहती हूँ कि क्या है आपके सवाल, और उस सवाल का जवाब तो मैं ही देना चाहती हूँ.
1: मैं पगला गया हूँ ये जान.
0: बिल्कुल, मैं तो आ चुकी हूँ दिल के मोहल्ले में लेकर चुनार वीज की गाड़ी.

0: दे सारी बातें और ये सवारी आप है और सवालों का जवाब मैं भी और जो मेरी पूरी वाइबो ट्राइब है वो भी दे सकती है और साथ में आप और हम मिलके इस शो के नाम
1: दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी।
0: बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही लगता है जब चिनार बीच स्टार्ट होता है और मुझे लगता है कि कोई भी दुनिया की चीज़ फीकी है, बस यही है जो है समा, यही मेरा है और आप है, हम है, मौका है, दस्तूर है, बस आपने कहाँ जाना है हुजूर। शो स्टार्ट हो चुका है, बैक टू बैक सॉन्ग्स है, ओनली ऑन हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। ढेर सारी बातें हो रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू कश्मीर। तो नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि अभी कम्प्लीटली सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स, बिकॉज अभी अगर हम देखें तो हम भी विटनेस कर रहे हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल, मजस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स एंड दैट टू रामबन बानी हल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा। अगर हम देखें हैवी रेन हो रहा है, मजस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, बैड वेदर कंडीशन के कारण ट्रैफिक को रोक दिया गया है। देखिए इट्स प्रिकॉशनरी, अगर हम देखें तो मेजर्स एंड प्रिकॉशंस के लिए लिया गया है सो दैट पीपल दे विल बी सेफ। वो ट्रैवल अगर करें तो उनको पता हो कि गाइडलाइंस ये है कि अभी हम नहीं कर सकते ट्रैवल और वो कोई और ही रास्ता अपनाएं। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस अगर हम देखें तो अभी सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कुछ कुछ जगहों से अगर हम देखें तो फ्लड्स ऐसा बताया जा रहा है, बट फ्लड्स जब भी ऐसा कोई रिस्क होगा, अलार्मिंग सिचुएशन होगी, तो वो आपको बता दी जाएगी। ऐसा पैनिक क्रिएट करना अर्ली ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। हम जो भी न्यूज़ देखते हैं सोशल मीडिया पर हमेशा उस न्यूज़ को वेरीफाई किया करें। कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हुई है क्योंकि वहाँ पे वैसी सिचुएशन ही हाई अल्टीट्यूड है या फिर वहाँ पर नज़दीकी दरियाव या फिर वहाँ का ऑलरेडी प्रेडिक्शन दिया गया था कि इस एरिया को खाली किया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि अभी कोई ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये हम सब ने समझना है कि हमें पैनिक क्रिएट करने के लिए फेक न्यूज़ आती है और हमें उस पर यकीन नहीं करना होता है। हम सेफ है, हम सिक्योर है, अभी कोई भी रेड सिग्नल नहीं आया है, हम ग्रीन सिग्नल पे है, ये ख्याल हम सब ने रखना है। हमें शांति से अपने दिमाग को ठंडा रखना है। फिलहाल अभी बारिशें हो रही है सो अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, वार्म रहिए एंड ट्राई कि अपने बच्चों को भी थोड़ा वार्म रखे, ज़्यादा उन्हें घूमने फिरने ना दे बाहर, और ट्राई करें कि अपने आप को वार्म रखे, हेल्थ का ख्याल रखे, फूड का ख्याल रखे। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं सो ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, गलत जगह पे ओवरटेक अभी कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमें अभी रिस्पॉन्सिबल से भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बिकॉज़ बारिश हो रही है, इस मौसम में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान बरतना पड़ता है गाड़ी चलाने के टाइम। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे निभाए और सच में हीरो बने, जीरो नहीं। हम कूल है, फूल नहीं, ये सबूत तो खुद ही देना है ना। और बस अगर घर पे है तो चाय की चुस्की के साथ इस मौसम को एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको। 8999904904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स ऐसे बन जाइए। आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 एफएम, ये है दिल की धड़कन।

0: 4 of them, point 4 of them.
1: Unstoppable with RJ Diva.

ब्लेसिंग है कि मेरी पूरी वाइबो ड्राइव आप स्पेशली टाइम निकालते हैं मेरे शो के लिए, बात करते हैं मुझसे. आई फील सो ओवरवेल्म एंड आई फील कम्प्लीट बिकॉज ऑफ यू. शायद से ये लगता होगा कि सिर्फ एक टाइम है मेरे लिए. इससे खूबसूरत मोमेंट और कुछ भी नहीं हो सकता है कि जहाँ पर आई एम टॉकिंग टू यू गाइज एंड यू आर शेयरिंग योर आइडियाज़ और मैं आपके आइडियाज़ पहुँचाती हूँ वहाँ वहाँ तक जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़. सो हम तो स्टॉप नहीं कर रहे भैया, हम तो ट्राई करते हैं कि आपको बताएं कि हर चीज़ का कुछ गलत मतलब नहीं होता है ज़िंदगी में. कि जब हमें कोई कुछ बोलता है, समझिए कि वो इंसान हमेशा हमारे लिए गलत नहीं होता है. समटाइम्स हम अगर किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट वी डोंट केयर फॉर देम, वी डोंट केयर फॉर दैट पर्सन. बट कभी कभार हमें ऐसा महसूस भी होता है कि अगर हम इंसान को बोलेंगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, कहीं ये मेरे बारे में गलत ना समझे. क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर ज़माने में हमें हर एक चीज़ एक नए अंदाज से मिलती है. बट ट्रस्ट मी, जो केयर होती है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है. जहाँ पर आपको लगेगा एक्सट्रीम हो रहा है, हम रोक सकते हैं, क्यों नहीं. सामने वाला पर्सन ज़रूर हमारी बातों को समझेगा. हम वेट कर सकते हैं, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा इट्स नीडेड, इट्स एक्चुअली मच नीडेड. सो वहाँ पर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि वहाँ पर आप गलत नहीं, अगर सामने वाला इंसान सोचेगा भी. बट ट्रस्ट मी, वो एक पीक होता है और उस मोमेंट में आपकी ज़रूरत होती है. तभी तो मैं कहती हूँ कि हम अनस्टॉपेबल हैं, हमारे इरादे अनस्टॉपेबल हैं. एंड ट्रस्ट मी, जब हमारे इंटेंशंस प्योर होते हैं तो हमें कोई भी सही को चुनने से नहीं रोकेगा. हो जाता है, देखिए जिया जल जाता है कि जब इंसान देखता है कि कोई गलत चीज़ कर रहे हो और आप दिल से चाहते हो कि उनका अच्छा हो, अच्छा वो करे ज़िंदगी में, तो सही डिसीजन ले, अपने दिमाग दिल की सुने और एक सही डिसीजन लेकर कोई भी रिग्रेट ना रखें. एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को. कुछ कहना चाहते 8899049904 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाएगा.

0: जी हाँ, रांझा रांझा करते हैं मैं आप पे रांझा हुई रेखा भारद्वाज। और ये कितना खूबसूरत सॉन्ग है।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: दीवा।
1: जी हाँ, खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर। और खूबसूरत से जो सॉन्ग्स हैं उनका सिलसिला जारी है और खबरों का भी सिलसिला जारी है। तो मन बोझो तो खबर विस्तार सान। तो खबरें क्या है, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक खबर, लेकिन जब हम बॉलीवुड की दुनिया की बात करते हैं अलग ही खबरें सामने आ रही हैं। एंड खासकर एक से बढ़कर एक मूवी तो आ रही है, बस हम तो आवारापन 2 की भी बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी कमाल की मूवी ऐसे नज़र आ रही है कि, क्योंकि आवारापन का जो क्रेज़ था वैसे ही ऐसे बताया जा रहा है कि आवारापन 2 का भी क्रेज़ काफ़ी हो सकता है। लेकिन उसके बाद जी हाँ, उसके बाद जो आने वाली मूवी है, हम बात कर रहे हैं मूवी टॉक्सिक के बारे में। हम बता दे समय ही मुझे ऐसा लग रहा है टॉक्सिक की मूवी दिख रही है हमें, क्योंकि यश का जो रोल है ना, इट्स टोटली इंटरेस्टिंग एंड इट सीम्स लाइक ही माइट बी चीटिंग ऑन मल्टीपल वेमेन एट द सेम टाइम। एंड चीटिंग इज चीटिंग ब्रो। अब खाने वाला चीटिंग वो तो चलता है, बट प्यार में चीटिंग नॉट फेयर।
2: खबर
1: अब ये खबरें आ रही है कि ये क्या मूवी है, यानी कि टॉक्सिक ही है क्या, या फिर ये ऐसा रोल दिखाया गया ना, यानी लाइक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम देखें तारा स्टार या कियारा अडवाणी, हुमा कुरैशी जो कि हिडन कैरेक्टर्स है, या नैनतारा, यानी ओवरऑल

अभी मूवी में काफी अलग ही सीन दिखाई दे रहा है. अभी कोई ट्रेलर भी नहीं आया मूवी का. बट या सॉन्ग्स के जरिए अगर हम देखें, कल एक और सॉन्ग मूवी का रिलीज हुआ आफ्टर तबाही एंड इट्स नाउ मदहोश. तनिष्क बागची का म्यूजिक है. फहीम अब्दुल्ला अरसलान निजामी, या दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अरसलान निजामी कश्मीरी सिंगर है. फहीम अब्दुल्ला सैयारा फेम. वैसे ही अरसलान निजामी का एक वो कहते हैं ना कि इस टाइम इट्स टोटली डिफरेंट, इट्स रॉक स्टार वाइब. सो सॉन्ग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बट अभी अगर हम देखें तो मूवी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं. क्या मूवी वर्थ इट होगी, क्या देखने लायक होगी, या फिर से वही कि हम सोसाइटी में जहाँ पे मर्दों के लिए चीटिंग इज़ ओके बट व्हेन इट कम्स टू वेमेन बहुत सारे सवाल उठते हैं. सो ये मूवी काफ़ी डिफरेंट होने वाली. अब क्या होगी, व्हाट आर योर थॉट्स, आप मुझे बता सकते हैं. शो का ऐसा बन सकते हैं 8999049044 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो का ऐसा बन जाए मेरे साथ.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1807178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

शो चुनाव भी सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM पे सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट आई है बहुत सारे लोगों का फेवरेट इट्स मैंगो. देखिए मेरा तो फेवरेट नहीं है बट बहुत सारे लोग मुझे ना कील कर सकते हैं अगर मैं यही बोलूँ कि मुझे मैंगो नहीं पसंद. बट बहुत सारे लोगों को आई मीन 90% ऑफ पीपल दे आर लाइक कि मैंगो हमारा फेवरेट है. एंड देखिए नेशनल मैंगो डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है ताकि मैंगो का जो हेल्थ बेनिफिट्स है कल्चरल सिग्निफिकेंस है और मैंगो का जो मैंगो यानी कि मैं कितना बोलूँ देखो मुझे अच्छा लग रहा है बोलते हुए क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि वो बस वो मत दिल दे बैठते हुए वो मतलब मर मिटने के लिए तैयार होते सिर्फ एक आम के लिए. अब आप मुझे बताइए कि आपको फेवरेट फ्रूट क्या है बट मैंगो के बारे में बात हो रही है. आप मुझे बताइए शो कैसा बन चाहिए 8999904904 पर आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और बता सकते हैं आपको मैंगो खाना कितना पसंद है.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हाँ ये जिद तो है मेरी कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। चिनार बीट्स खत्म हो चुका है लेकिन शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर आप अपने फेवरेट ट्रैक्स एंजॉय करेंगे। बस नंबर वही है 8899904904, आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं शो म्यूजिक ऑन डिमांड को। जल्दी कीजिए शो चिनार बीट्स का हिस्सा बनने के लिए, तो आपने मेरा साथ दिया। और वही नंबर फिर से रिपीट करूँ, इट्स 8899904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड का अब हिस्सा बन जाइए। अपना फेवरेट ट्रैक सुनिए, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चिनार 90.4 एफएम पर।

शो म्यूजिक ऑन डिमांड आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. स्टार्ट हो चुका है शो. शबनम की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए. आप शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-04904 पर आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन सकते हैं.

हाँ, जाकिर की रिक्वेस्ट आई इस ट्रैक के लिए, आप इंजॉय कीजिए शो. म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है. आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8999-0904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए.

देखिए मैं छोड़ के तो नहीं जा रही, बस ये है कि शो म्यूजिक ऑन डिमांड का टाइम खत्म हो चुका है और इसी ट्रैक के साथ टाटा बाय बाय शो म्यूजिक ऑन डिमांड में, और कल आएंगे आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए शो म्यूजिक ऑन डिमांड में। फिलहाल के लिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही हूँ आपके साथ। आज 2 बजे शो खत्म नहीं हो रहा है बल्कि रेडियो गर्ल्स कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा और आपने बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, बहुत सारी बातें करनी है। मैं अकेली थोड़ी आऊँगी, मैं और असरा मिलके आपके साथ बातें करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए हमारा इंतज़ार, हम आएंगे यहीं पे मेरे यार, क्योंकि रेडियो चिनार है सही मेरे यार। शो चिनार बीट्स म्यूजिक ऑन डिमांड खत्म हो चुका है, रेडियो गर्ल स्टार्ट होगा ऑन योर रेडियो चिनार 91.4 FM पर।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: girls like to swing aur aapki radio girl swing marne baat karne par idhar hai
1: bilkul and in sab ke man mein kya aur kya hai kya nahi hai kya aspirations hain hamari companions hamari saheliyon ke hamare uske bare mein baat karte hain hum radio
0: girls bilkul dekhiye man ki baat ho rahi hai yani ki man ki hi baat aaj hogi female intuitions ke bare mein hum baat karne ja rahe hain aur hint bhi asra ne दिया टॉपिक भी हमने बोल दिया है बस आप दरवाजे खोल दीजिए नंबर शॉर्ट है क्या है नंबर
1: 8899049904 इज द नंबर और आज हम फीमेल इंट्यूशंस के बारे में बात करें वो मन की आवाज जो हमारी होती है एक सिक्स सेंस हमारा जो गट फीलिंग होता है वो काफी तेज होता है
0: बिल्कुल अभी हमारा सिक्स सेंस बहुत ही ज्यादा तेज है और हम ये सोच रहे हैं कि आज लड़कियां जी भर के बात करने जा रही है इवन हर कोई कर सकता है एंड इट्स विमेन ओरिएंटेड शो बट खाली औरतें क्यों बात करें हर कोई कर सकता है भैया जी और नंबर तो बता दिया है फिर से बता रही हूँ 8899049904x व्हाट्सएप कर सकते हैं और शो रेडियो
1: गर्ल्स का हिस्सा बन सकते हैं सो स्टे ट्यून्ड टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर
0: क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: जी हाँ, गड्डी लेके तो मैं नहीं जा रही कहीं पे, फिलहाल हम ना दिल लेके जा रहे हैं और दिल लेके जा रहे हैं। अब हम क्या गए हंगामा में, तो अपना दिल ही है जिस दिल से आप दिल मिलाते हैं, प्यार करते हैं और क्या मतलब फुल ऑन ड्रामा होता है। अब वो ड्रामा यही पे मेरे साथ है सिमरी, अच्छा लग रहा है इनको, अभी हंस भी रही है।
1: तारीफ

0: कर रहे हैं मेरी।
1: देखिए जब ट्रस्ट मी इससे एक ही चीज़ मैसेज आती है सिंपली है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोलते हो ट्राई करें, अगर बुरा ना बोलो कुछ अच्छा ही बोलो,
0: अच्छा ही
1: उसका बोलो। उनका दिल बन जाता है, जैसे कि असराना के मस्त हो गया।
0: बिल्कुल आपने मेरा दिन बना दिया।
1: सो आई फील कि एक छोटे से एफर्ट या वर्ड की वजह से आप किसी के मुंह पे एक छोटी सी स्माइल ला सकते हो। तो ये काम हमने करना है एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगता है सब करके। आप ट्राई करके तो देख लीजिए। फिलहाल के लिए मैं तो चली अपनी गली और कल आपसे मिलूंगी 12 बजे असरा आपके साथ फुल ऑन ड्रामा हंगामा आप करेंगे ओनली ऑन रेडियो 90.4 FM और शो रेडियो गर्ल्स के संग। हम आपके संग मिलेंगे बराबर सैटरडे को। फिलहाल अपना ख्याल रखिए। आप सुनते रहे रेडियो 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

अरे डोला कौन बोला? मैं बोला कि तू बोला? तू बोला नहीं, तू बोला और मैं बोला। तो मेरा नाम है आरची। इस तरह शुरू हो चुका है शो हंगामा, जहां हम बोलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और क्या और है, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और इसके अलावा क्या बजिंग है और लाइफ का एंड सब फिलोसफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है।

अरे हमारी जुगनी यानी कि मैं नाटे नखरे वाली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट इज वेयर द ड्रामा कम्स फ्रॉम। मैं वहां से शुरू हो चुका है शो हंगामा। अभी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899904904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं वहां से सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. हंगामा शो कुछ देर पहले शुरू हुआ है और शुरू होते ही फ्रेश फ्रेश आप तक आज की जो ताज़ा खबर है वो पहुंचती है. दैट इज़ कि सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है, जो इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक या यूट्यूब है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं. रीपोस्ट या कोई ऐसी रील होती है जिसे हम रिक्रिएट करता हुआ देखते हैं लोगों को. और आज बात हो रही है एक रैपिडो ड्राइवर की. जी हाँ, एक रैपिडो बाइकर है जिनका नाम आकाश सागर है. उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था एंड From just being a social media, एक influencer कह लें या rapido driver बोलें, वहाँ से उनकी जो journey रही है एक influencer, proper influencer बनने की, एक viral sensation बनने की, that's amazing. और उन्होंने एक कोलाब किया है विद वन एंड ओनली चार दीवारी, जो एक जेंजी रेनाउंड कंटेंट क्रिएटर भी हैं, सॉन्ग राइटर हैं, एंड ही इज सच में अब बंदा काम का. बिल्कुल भी नहीं आवारा नहीं है. वेरी टैलेंटेड, वेरी लाइक स्किलफुल, I would say songwriter, singer है, music composer है. He has also worked with the one and only Sonu Nigam and amazing. He's making his place in this industry. But इसके अलावा अगर बात करें आकाश सागर की, उसकी journey जो उनकी journey रही है actually rapido से, he is right now a viral sensation. मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM।

Hi, main hu Asra and you have tuned into the hottest frequency of North Kashmir. शो है हंगामा जहाँ होता है ड्रामा पर अपडेट्स भी जरूरी है और अभी की अपडेट इज रिलेटेड टू रेलवे अपडेट और जो भी लोकल रेगुलर ट्रेन्स हैं दे वर एंड विल बी एज पर द समर टाइम टेबल एंड दे आर एज पर द शेड्यूल. कोई भी जो मौसम की वजह से कोई भी ऐसे डिले नहीं है, बस जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फ्लाईओवर या कंस्ट्रक्शन जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बिटवीन पटन एंड हामरे स्टेशन, वहाँ पर थोड़ी ट्रेन जो है उस वजह से मॉर्निंग की जो ट्रेन है वो डिले हो गई थी और बट अभी जो आफ्टरनून की ट्रेन्स है या इवनिंग की ट्रेन्स है वो डिले नहीं होंगी. दैट विल बी एज पर द शेड्यूल. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास लाइव अपडेट रहे हर चीज़ की, ऑन टाइम क्या हो रहा है, अभी कौन सी ट्रेन कहाँ है और ट्रेन बिटवीन स्टेशंस, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन्स और वेयर आर यू, इवन यू आर इन द ट्रेन, आपको अपनी लोकेशन पता चल सकती है कि कौन सा नेक्स्ट स्टेशन है, कौन सा प्रीवियस

था। सो आप डाउनलोड कर सकते हैं रेल वन ऐप, दैट इज इंडियन रेलवे ऑफिशियल ऐप, जहाँ पे सिर्फ आपको कश्मीर रेलवे लिंक, दैट इज बानीहाल, बारामूला, बड़गाम, ये सारे स्टेशन की अपडेट्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे इंडियन रेलवे के अपडेट्स के बारे में आपको पता चल सकता है। मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो चुनाव 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। देखिए अपडेट्स इन्फॉर्मेशन इज देयर बट एट द सेम टाइम द एंटरटेनमेंट पार्ट इज ऑल्सो ऑन। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स में मास्टर सुनते रहिए रेडियो चुनाव।

0: जरूर होगा, मुझे छोड़ गया तो क्या हुआ, आदत से मजबूर होगा, अल्लाह कसम यकीन है मर जाओगे, जो हमारे साथ किया आपके साथ भी जरूर होगा, आपके साथ भी जरूर होगा।
1: करो हंगामा आरजे असरा के साथ
2: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

वेलकम बैक टू शो हंगामा। देखिए, हर दिन का एक टॉपिक रहता है हमारा, जिसके बारे में हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि व्हाट इज अप, क्या चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है, दैट इज कंट्रोल और काइंडनेस, कि किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। या कोई ऐसा इंसान होता है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा ग्रुप, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक इंसान हो, कभी कभी कुछ ग्रुप्स ऐसे ज़िंदगी में होते हैं, चाहे वर्क प्लेस पर हो, स्कूल्स में हो, कॉलेज में हो, घर पर हो, हर जगह ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपको धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। एंड वो कंट्रोल आपको दिखता नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ वेरी काइंड टू यू। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एक एहसान करने की कोशिश में वो आपकी ज़िंदगी का धीरे धीरे कंट्रोल ले लेता है। और आज हम उसी बारे में बात करेंगे। और नॉर्मली साइकोलॉजिकली किस चीज़ को ज़्यादा इज्जत मिलती है, अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, क्या वो अप्रिशिएटेड होता है, या कंट्रोल से जो डर इंड्यूस होता है उस वजह से लोग आपको सही मानते हैं और मानना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। आज इस बारे में बात होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम डेली लाइफ पे फेस करते हैं। तो क्यों ना हम इस बारे में आज बात करें और आपके भी विचार दें। और ओपन कम एंड टॉक टू अस एंड 8899904904 इज अ नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और जैसा कि मौसम है अभी बहुत ही खूबसूरत है, आई होप कि जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो अभी इस मौसम का कहते हैं ना लुत्फ तुलन, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दैट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एवरी डे। सो हर चीज़ का एक रोमांटिसाइज करना, हर चीज़ में एक खुशी ढूंढना, वो भी एक कला है। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो चुना 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक इसी दे हॉटस्ट फ्रीक्वेंसी पे शो चल रहा है हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 एफएम। हंगामा शो है और आज हम कंट्रोल वर्सेस काइंडनेस के बारे में बात करें, यानी कि कुछ लोग व्हाट स्पेशली इफ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्पेसिफिकली काइंडनेस। काइंडनेस होता है कि आप किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करते हैं, आप उनके लिए बिना कुछ वापस चाहे उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं। दिस इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करिए, अगर बुरा है तो बुरा मत करिए। दैट इज़ समथिंग जो आइडियोलॉजी नॉर्मल लोगों की होती है, बट कुछ लोग से होते हैं जो आपको एक डिसगाइज्ड काइंडनेस दिखाते हैं, यानी कि वो आपको दिखाते हैं कि दे आर वेरी काइंड टू यू, दे वांट टू हेल्प यू आउट इन समथिंग, या आपको एक अनएक्सपेक्टेड चीजें कर रहे हैं आपके लिए, ओवर लविंग लव शॉवर्स बरस रहे हैं। बट इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, और इस बारे में जब हम सोचते हैं कि वो एक्चुअली हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे धीरे धीरे वो हमारी पूरी जिंदगी पे, हमारे डिसीजंस पे एक कंट्रोल ले आए, इसलिए क्योंकि वो अपना एक डेट यानी कि एक उधार रखते हैं जस्ट टू, वो जो काइंडनेस होती है वो एक हिसाब से एक उधार होती है कि मैंने आपके साथ अच्छा किया है तो अब आप वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ। और ऐसा बहुत सारी जगहों पे होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेसेस पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता, बल्कि हमारी डेली लाइफ में ऐसा चीज़ होता है कि जब आप कंटिन्यूसली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते ही नहीं है या जान ही नहीं पाते अपनी पूरी लाइफ टाइम में कि कोई इंसान अगर सच में एक जो उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, काइंड होके बिहेव कर रहे हैं, वो सिर्फ काइंडनेस नहीं बल्कि कंट्रोल जाहिर करने का एक तरीका है।

दैट इज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक. और ये लोग इसलिए मतलब जो विक्टिम होता है वो ये भरोसा नहीं कर पाता इसी रीजन से कि उन्हें लगता है कि भाई इन्होंने तो मेरी हेल्प की थी ना, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं. बट हम समझने पे लाइक चूक जाते हैं ये चीज़ समझना कि हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया चलता है होता है, पर हमें अपने आप को संभालने की ज़रूरत है. एग्जैक्टली जो दुनिया आपको दिखाती है, जो लोग आपको दिखाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब वैसा ही हो. जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही सच में होता है बॉस. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपने आसपास लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करें, किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, सबके साथ इज्जत से पेश आएँ, बट अपने मेंटल हेल्थ और अपनी एक इंटीग्रिटी, एक इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. और देखिए अभी हम प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, सोल्यूशन के बारे में भी बात होगी, बट कुछ ट्रैक्स के बाद. मैं हूं आसरा सुत्रिया, रेडियो सुना 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन. और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान है या आप ऐसी चीज की सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो 8899904904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. मैं हूं आसरा सुत्रिया, रेडियो सुना 90.4 एफएम. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। जैसे कि आज हम कंट्रोल एंड काइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की कि कोई इंसान अगर काइंडनेस को यानी कि लाइक सजल रहना, सुशील रहना, किसी के साथ अच्छे से बिहेव करना, तमीज़ या बिहेवियर अच्छा हो, या किसी के साथ एक्चुअली बिना कुछ वापस एक्सपेक्ट किए किसी के लिए अच्छा करना, उस बिहेवियर को एक कंट्रोल्ड काइंडनेस में चेंज करते हैं। यानी कि एक ऐसा एक पहलू, एक ऐसा मास्क कि मैं आपके साथ बहुत काइंड हूँ, बट उनका इरादा जो है वो कुछ और ही होता है। और सबसे बड़ी बात जो जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों लाइक अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है तो एक टेस्ट हो सकता है ना कि क्या साइंस है कि कोई इंसान ऐसा कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स पे आपका साथ देता है जहाँ पे शायद आप गलत भी हो, बट सिर्फ इसलिए ताकि एक जो कर्ज है आप पे वो एक काइंडनेस का कर्ज आप पे रहे और कल को वो चीज़ वो इस्तेमाल कर पाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या कर सकता है इंसान, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम अगर प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी यही होता है। और आज जो आजकल की दुनिया में अगर ऐसा कोई आपके साथ कर रहा है या

0: कोई भी ऐसी चीज हो रही है जहां पे आपको लगता है कि कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है थ्रू काइंडनेस, तो ये आसान नहीं होता। अगर कोई एक अपफ्रंट तरीके से आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो शायद आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बट जब कोई आप ऑन द सरफेस सबके सामने आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है बट वो सही में आपका अच्छा नहीं चाहता, तो उससे कैसे काउंटर करें? उससे ये काउंटर कर सकते हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज जो है बहुत ग्रेसफुली, बहुत तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आप सामने रखें और वो बाउंड्री बनाएं, और हर चीज़ जो आपको लाइक सही नहीं लगती है, कंफर्टेबल नहीं लगता, उसको ना कर सकते हैं। ना बोलना बहुत ही ज़रूरी है और आज की जेनरेशन ना बोलना जानती है, बट फिर भी कभी कभी इंसान चूक जाता है ये समझने के लिए कि ना बोलना भाई कितना ज़रूरी है।
1: हो सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: बिल्कुल, जिस मौके पे अपनी बाउंड्री रखकर ना बोलना हो तो वो मौका तो खास हम खास है भाई। और अभी की बात करें तो सबसे बड़ी चीज, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली आपको वो कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप ना बोलें, ठीक है, तो वो चीज़ इट्स वर्थ टू लूज, बिकॉज अगर कोई आपको वो गिल्ट ट्रिप कर रहा है कि भाई आपने मेरे साथ बुरा किया है, आपने, आपके लिए मैंने ये किया था, आपने वापस नहीं किया, दैट इज़ कंट्रोल राइट देयर, तो वैसे इंसान को, वैसे ग्रुप को छोड़ देने में बड़ा बलाई है। और आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, ना बोलने में कभी, द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज सो स्वीट, एंड दैट इज जस्ट स्वीट फॉर समबडी जो एक्चुअली खुद को बाउंड्री, लाइक बाउंड्री क्रिएट करना चाहता है। सो सुन रहे हैं रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन, एंड बिल्कुल ना बोलेंगे तो ऐश करेंगे मैं मसरा। सुन रहे हैं रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

हाय मैं वसरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन. और देखिए, दिस इज लाइक रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899049904 इज द नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. जल्दी से भेजिए अपने

हाय मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए अभी तक तो हमने हर चीज़ के बारे में बात की कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है, बट एक और बात है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। बात की ही बात हो रही है कि अभी दिस मॉडर्न वर्ल्ड, चाहे हम किसी भी प्लेस की बात करें, कोई भी सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, सोशल स्ट्रक्चर इन द सेंस कोई सोसाइटी में जो भी ग्रुप्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम करते हैं उन्हें हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। चाहे हम किसी ऑफिस की बात करें, हम किसी स्कूल की बात करें, हम किसी ग्रुप की बात करें, हम किसी NGO की बात करें, जहाँ भी लोग साथ मिलकर किसी ना किसी काम, किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए काम करते हैं, तो अभी जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या पसंद करते हैं, द कंट्रोल और द काइंडनेस और द डिसगाइज्ड काइंडनेस। तो अभी की बात करें तो मैक्सिमम देयर इज अ वेरी शिफ्ट इन एक्चुअली द शिफ्ट ऑफ एजेस, कि कोई ज़्यादा अब एज में बड़ा है, जेनरेशनल गैप फेस कर रही हैं जगहें, उस वजह से जो नई जेनरेशन है वो चाहती है कि हमारा जो भी एक अप फ्रंट पे लीडर है या कोई भी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लीडर्स, इट्स अबाउट द सोसाइटी, इट्स अबाउट द पीपल हु आर अराउंड, दे शुड नॉट बी इन अ कंट्रोलिंग सेंस, दे शुड बी इन अ काइंडनेस मैनर, जो अपनी बाउंड्री रखे बट नॉट बीइंग अननेसेसरली रूड या अननेसेसरली जो आपसे वो डिसरिस्पेक्टफुल या अननेसेसरी वो कंट्रोल करना, माइक्रो मैनेज करना जिसे हम कहते हैं, वो सब चीज़ें किसी को पसंद नहीं है। इवन तो अभी अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मिलेनियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो 30s, 40s या 50s के जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं एक्चुअली, वो इस बारे में बात ज़रूर करते हैं कि कैसे जेनजीज हो, जेन अल्फाज हो, स्पेसिफिकली जेनजीज, बिकॉज अभी जेनजी का टाइम है कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, दे आर नॉट किड्स एनी मोर। सो बेसिकली वो इस बारे में बात ज़रूर करते हैं कि कैसे जो जेनजीज है, दे हैव फन, दे टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स मेंटल हेल्थ, बट एट द सेम टाइम वो अपनी बाउंड्री भी सामने जाहिर करते हैं। तो अभी के जो मॉडर्न जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि जो वो टू नाइस वाला बिहेवियर है, ताकि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, वो भी ना हो, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी ना हो कि आप किसी पे अपना पावर धोंस रहे हो, आप किसी पे वो कंट्रोल जाहिर कर रहे हो, जो कि सही बात बिल्कुल नहीं है। अब देखिए दिस इज़ वी आर एंडिंग द टॉपिक एट अ वेरी गुड नोट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इस बारे में लाइक वी शुड फील वेरी रिस्पेक्टेड इस बारे में कि हम अगर सही से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, देन अगर आपने कोई गलती नहीं की है, हमने कोई गलती नहीं किया, तो आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। बट जब तक एक इंसान अपना ख्याल नहीं रखे, जब तक एक इंसान अपनी खुद वो सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करे, तब तक कोई भी नहीं करता। सो ज़रूरी है कि यू बी kind to people, that's very important, you be kind, अगर आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तो अच्छा बोलिए, अगर बुरा है तो बुरा मत बोलिए, कुछ बुरा बोलने से बेहतर है कुछ ना बोले। बट अभी का ये है कि अपने साथ भी कुछ बुरा होने ना दीजिए, ये एक वीकनेस नहीं बननी चाहिए, जो आपका काइंड नेचर है वो एक वीकनेस नहीं बनना चाहिए। द बाउंड्री, एक बाउंड्री अफर्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप बच के रहें और सुनते रहें रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। क्योंकि आज हमने इस बारे में बात की है और कल को भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो एक्चुअली आपको अपनी ज़िंदगी जीने में एक नया पर्सपेक्टिव देता है, या आप दुनिया के बारे में और कुछ नया जानते हैं। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: I'm a maniac. मैं हूँ आस्था सुंदर, रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई, अभी भी कुछ देर बाकी है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899-0494 इज अ नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप और बन सकते हैं हॉरस फ्रीक्वेंसी का हिस्सा।
1: बाज वांगू तक दाए नारा लाइक।

मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम।

हाय, मैं हूँ अस्टा और आप सुन रहे थे रेडियो सुनार 90.4 एफएम पे शो हंगामा, जो कि बराबर 4 तक चलता है। और देखिए 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था, बट इस बात का वादा करती हूँ कल वापस आऊंगी बराबर 2 बजे 2 से 4 रेडियो सुनार पे शो हंगामा होता है एंड वेंसडे और सैटरडे स्पेशल शो दैट इज रेडियो गर्ल्स। अब देखिए जाते जाते आप सबके लिए एक ऐसा ट्रैक जो एक्चुअली कुछ तो अंदर से एक फीलिंग सी आती है ये ट्रैक सुन के कि भाई क्रेजी है बॉस। अगर कोई दुश्मन भी ना हो ना फिर भी लगता है कि भाई मत कर लाना, मत

देखिए मचा रहे जब से हम थे बाईस. आई लव दैट पार्ट ऑफ द सॉन्ग. आई एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स. और अभी अगर मैं जा रही हूँ तो एंटरटेनमेंट बैक टू बैक ट्रैक्स रुकेंगे नहीं. मैं मोस्टा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM. अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और ना बोलना बहुत ज़रूरी है और ना बोलना सीखिए. मैं मोस्टा सुनते रहिए रेडियो सुना. आज के लिए बस इतना ही. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। Let's do it together. Let us prove it together that we are responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM, and we care for you.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: खादिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनाव।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-404-1807178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज ये असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: आदिनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मसनद सुनो।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026

0: सकती।
1: अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chunar 90.4 FM and we care for you.
4: Dil ko
5: karar aa jaye
4: jab bhi aaye
5: suhani shaam,
4: dabi yaadein mehak jaye
5: jab bhi aaye
4: suhani shaam।
5: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
5: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: sé.
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
2: 90.4
1: एफएम।

0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

शांति, तुमने तुमने सही किया, अपनी खुशी चुन ली, और ये मत सोचना कि मेरा दिल टूट गया ना। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्योंकि क्योंकि तुम खुश हो। लेकिन वो मेरा साहब से जरूर कह देना कि इस बार मैंने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी खातिर। सारी रात बार किसी जन्म में उनका मुझे फिर पाला पड़ गया ना। तो आप मुनियादार मुनियादार या नाराज कला माइंडे बहुत तो नहीं हो रही है।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: FM।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी इंसान था।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन

अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्यूनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन

0: महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दौड़ कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: सवरिया ओए ओए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: बचाऊंगी शोर बचाओ अमुए ओ मुर्गे ओ कौवे पीछे पीछे आते हो क्यों दिल के चोर मान जाओ धरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय मुझको बना गए बावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

कोई वो कैसे मेरी बातों में कहता हूँ दम तो लेने दो। आ हा हा क्या क्या कह डाला आंखों आंखों में कहता हूँ दम तो लेने दो। आ हा हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

0: हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।